0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention!
3: Property owners and letting agents, are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो उस लासा ट्यूशन सेंटर वालों को जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: लासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, लासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए। सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
8: You are listening 97.1 FM.

0: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
1: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
0: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
1: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
0: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
1: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
0: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ, और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
2: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
0: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
3: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
8: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
7: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
8: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
7: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
9: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स, होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bedford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

Turn It Up, Radio Faza 97.1 FM.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
6: मंगला जो भी मंगना मिल जुगा
7: जो मंगना सी वो तो मिल गया।

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों भी प्यार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है?
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972ET
3: Peshawari Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting

0: conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
1: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
2: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूँ कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे राब्ता किया जाए?
1: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
2: मुगल बिल्डर्स?
1: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
1: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
2: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
1: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97।
2: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: जी हाँ, रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज़ ब्रेकफास्ट के साथ फ्रेश बेक्ड अटल ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ ओल्ड भी लजीज हो जाए। गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से प्रीने हुमस ओट्स ताजा पकार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाक्य यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल unbeatable taste
1: रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात साढ़े दस बजे तक विजिट करें 136 138 अल्फर्ड किंग रोड नॉटिंघम या अवीर आप तक करें 07575 9993 15 150 6969 Mariah Restaurant Tron जहाँ हर मील पंजाबी है इक्या यादगार लम्हा।

0: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
1: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
0: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है?
2: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Zabardast hits.
8: Music never sounded better.
4: Fazan 97.1 FM.
8: I love it.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: It's
8: music never sounded better.
9: Fazan 97.1 FM.
8: I love it.
10: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आर्याना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज शनवारी और चर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
2: अब और ना सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम 972ET
3: पिशावरी डेरा।
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करे।
6: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
7: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मज़ीद मालूमात के लिए
8: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodpro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: This is a public service announcement.
8: The station
9: that plays
10: foot tapping music.
11: Azar 97.1 FM.
3: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: बिना जट ते
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
3: Attention,
4: property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
5: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
6: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सेट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
5: सलासा ट्यूशन सेंटर?
6: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
5: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
6: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
5: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
7: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
8: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
9: It's
10: music never sounded better.
11: Fazan 97.1 FM.
10: I love it.
12: You are listening 97.1 FM.

ऐसे वैसे जाने लोग कैसे कैसे मतलब से बात करें तन्हा रात और याद तेरी इस कश्मकश में चाहे दिन या शाम पूरी कायनात हो लिखूं तेरी सदाएं पढ़ूं सारी दुआएं फिर भी तू रास ना आए हम तेरे खास सताए माना हम मर ना पाए जी के भी कर ना पाए तेरी मोहब्बत की जो कीमत

0: 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त लेने।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
0: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
3: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
8: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
7: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
8: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
7: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
9: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स, होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bedford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

ना ही सादा पुलाव, आज हम बनाएंगे खुशबूदार कीमा पुलाव। सो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, लेकिन ट्रस्ट मी अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो ये इंग्रेडिएंट्स आप सभी से शेयर करती हूँ। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बासमती चावल 1/2 kg, या फिर आप 1 kg यूज़ कर सकते हैं, ये टोटली आपकी चॉइस है आप कितनी क्वांटिटी में बना रही हैं। लेकिन अगर आप 4 से 5 लोगों के लिए बना रही हैं तो 1 kg इज़ अनफ। लेकिन अगर आपके घर के मेम्बर्स हैं थोड़े से कम, या फिर आप रहती हैं अकेले और आप खुद के लिए बना रही हैं, सो आप 1/2 kg भी यूज़ कर सकती हैं। आपने अच्छे से चावलों को साफ़ करके भिगो के पानी में रख देना है। इससे क्या होता है कि चावल अच्छे से गल जाते हैं, चावल गलने में ज़्यादा वक्त नहीं लेते और आपको कोई दिक्कत नहीं होती। अब हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है बीफ या फिर मटन कीमा। इट्स टोटली योर चॉइस कि आप क्या ट्राई करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, लेकिन मैं यहाँ आज यूज़ करने जा रही हूँ बीफ कीमा, क्योंकि मेरे पास वो अवेलेबल है। सो सेम जितने क्वांटिटी के आपके चावल होंगे उस हिसाब से आपने उतनी ही क्वांटिटी में कीमा ले लेना है। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ 1 kg चावल, सो इसमें मैं यूज़ करूँगी 1 kg कीमा। अब इसमें शामिल होंगे प्याज 4 अदद, जिन्हें हम बिल्कुल बारीक सा कट करके रख लेंगे, साथ ही साथ टोमेटोज 2 से 3 अदद, इन्हें भी हम अच्छे से कट करके रख लेंगे। हमारा अगला इंग्रेडिएंट है जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 खाने की चम्मच। साथ ही साथ रेसिपी में ऐड होगा योगर्ट 1.5 कप। अब जरा बारी आती है स्पाइसेस की जानिब बढ़ने की। सो जी स्पाइसेस में हमारे पास है जी साबित गरम मसाला, जिसमें हम 1 दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग, 1 चाय का चम्मच ये यूज़ करेंगे। गरम मसाला बहुत अच्छा होता है, खुशबू का काम करता है, साथ ही साथ एक ऐसा टेस्ट फ्यूजन ऐड कर देता है पुलाव में कि दिल करता है कि इंसान बस खाता चला जाए। अगले हमारे स्पाइसेस हैं लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्चें 5 से 7 अदद, पुदीना थोड़ा सा हल्का सा मुट्ठी भर लेके, और साथ ही साथ नमक हस्ब ज़रूरत हस्ब ज़ायका, और साथ ही कुकिंग ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल। सो इट्स टोटली योर चॉइस कि आप कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं, बासमती घी यूज़ करते हैं, या फिर आप ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं। वैसे हेल्थ कॉन्शियस हजरात तो ऑलिव ऑयल की तरफ ही प्रेफर करेंगे, लेकिन ये आपकी अपनी चॉइस है, मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ सिंपल कुकिंग ऑयल। सो द लिसनर्स, ये थे वो सभी इंग्रेडिएंट जो कि मैंने आप सबसे शेयर कर दिए। अब जरा शो में वक्त हुआ है 1 अदद कमर्शियल ब्रेक का। आई नो कमर्शियल ब्रेक पे जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, क्योंकि इतनी अच्छी गपशप हो रही होती है और दिल करता है कि इस गुफ्तगू को मजीद इसी तरह से कंटिन्यू किए रखें, लेकिन कमर्शियल ब्रेक में जाना बहुत ज़रूरी है। सो जी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानेब। आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के उस पार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद अस।

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ka khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंघम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
2: जहाँ लजीज शनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम काबली पुलाव दिल जीत लेगा।
2: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब,

0: Are you in the process of obtaining a HMO licence for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
1: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
2: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
1: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
2: मुगल बिल्डर्स?
1: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
3: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
1: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
2: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
1: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
4: गेट रेडी टू मूव,
5: इट्स ऑल अबाउट द बीट।
6: वाओ एफएम,
7: ओनली ट्यून सुपर हिट चैनल,
8: फेज ऑन 97.1 एफएम।
9: नी तेरे सुपने दे विच सोनेया,
10: ना ही सादा पुलाव। आज हम बनाएंगे खुशबूदार कीमा पुलाव। सो ये काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आप इसको ट्राई करेंगे तो ये आपको बहुत अच्छा लगेगा। सो ये इंग्रेडिएंट्स आप सभी से शेयर करती हूँ। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए बासमती चावल 1/2 kg, या फिर आप 1 kg यूज़ कर सकते हैं, ये टोटली आपकी चॉइस है, आप कितनी क्वान्टिटी में बना रही हैं। लेकिन अगर आप 4 से 5 लोगों के लिए बना रही हैं तो 1 kg इज़ अनफ। लेकिन अगर आपके घर के मेम्बर्स हैं थोड़े से कम, या फिर आप रहती हैं अकेले और आप खुद के लिए बना रही हैं, सो आप 1/2 kg भी यूज़ कर सकती हैं। आपने अच्छे से चावलों को साफ़ करके भिगो के पानी में रख देना है। इससे क्या होता है कि चावल अच्छे से गल जाते हैं, चावल गलने में ज़्यादा वक्त नहीं लेते और आपको कोई दिक्कत नहीं होती। अब हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है बीफ या फिर मटन कीमा। इट्स टोटली योर चॉइस कि आप क्या ट्राई करते हैं, क्या यूज़ करते हैं, लेकिन मैं यहाँ आज यूज़ करने जा रही हूँ बीफ कीमा, क्योंकि मेरे पास वो अवेलेबल है। सो सेम, जितने क्वांटिटी के आपके चावल होंगे उस हिसाब से आपने उतनी ही क्वांटिटी में कीमा ले लेना है। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ 1 kg चावल, सो इसमें मैं यूज़ करूँगी 1 kg कीमा। अब इसमें शामिल होंगे प्याज 4 अदद, जिन्हें हम बिल्कुल बारीक सा कट करके रख लेंगे, साथ ही साथ टोमेटोज 2 से 3 अदद, इन्हें भी हम अच्छे से कट करके रख लेंगे। हमारा अगला इंग्रेडिएंट है जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 खाने की चम्मच। साथ ही साथ रेसिपी में ऐड होगा योगर्ट 1.5 कप। अब जरा बारी आती है स्पाइसेस की जानिब बढ़ने की। सो जी, स्पाइसेस में हमारे पास है जी साबित गरम मसाला, जिसमें हम 1 दालचीनी, 2 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग, 1 चाय का चम्मच ये यूज़ करेंगे। गरम मसाला बहुत अच्छा होता है, खुशबू का काम करता है, साथ ही साथ एक ऐसा टेस्ट फ्यूजन ऐड कर देता है पुलाव में कि दिल करता है कि इंसान बस खाता चला जाए।

0: अगले हमारे स्पाइसेस हैं लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्चें 5 से 7 अदद, पुदीना थोड़ा सा हल्का सा मुट्ठी भर लेके, और साथ ही साथ नमक हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायका, और साथ ही कुकिंग ऑयल या फिर ऑलिव ऑयल। सो इट्स टोटली योर चॉइस कि आप कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं, बासमती घी यूज़ करते हैं, या फिर आप ऑलिव ऑयल यूज़ करते हैं। वैसे हेल्थ कॉन्शियस हजरात तो ऑलिव ऑयल की तरफ ही प्रेफर करेंगे, लेकिन ये आपकी अपनी चॉइस है। मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ सिंपल कुकिंग ऑयल। सो द लिसनर्स, ये थे वो सभी इंग्रेडिएंट जो कि मैंने आप सबसे शेयर कर दिए। अब जरा शो में वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का। आई नो कमर्शियल ब्रेक पे जाने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता, क्योंकि इतनी अच्छी गपशप हो रही होती है और दिल करता है कि इस गुफ्तगू को मजीद इसी तरह से कंटिन्यू किए रखें, लेकिन कमर्शियल ब्रेक पे जाना बहुत जरूरी है। सो जी चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की। थोड़ा सा इमोशनल है, थोड़ा सा सेंटिमेंटल है, लेकिन आपने बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना और निहायत ही दिल से इस खूबसूरत से ट्रैक को एंजॉय करना है। तो जी लिसनर्स, प्ले करती हूँ ये खूबसूरत ट्रैक। ट्रैक के उस पार होती है आपसे मुलाकात, और फिर यही गपशप का सिलसिला तो चलता रहेगा, क्योंकि हम और आप रहने वाले हैं ठीक 2 घंटे तक साथ, जिसमें से 1 घंटा हो चुका है कम्प्लीट, लेकिन अभी 1 घंटा बाकी है।
1: खूबसूरत चीज में दाग होता है, चांद में भी दाग है, तो फिर ये बगीचा इतना बेदाग क्यों?
2: क्या बात है, चंद ही लफ्जों में मेरे सवाल का जवाब दे दिया तुमने, सारे एक्सपर्ट्स को मात दे दी। यू के
1: आंख में कुछ चला गया है।

0: नायला वो सिम कार्ड चाहिए था, मेरे बेटे से बात करनी है, प्लीज दिला दो।
1: मम्मा, I'm here.
0: सांझ?
1: I told you ना, अब हम रोज फ्री में बात कर सकते हैं। मैडी आंटी ने प्रिंसिपल से भी पर

सो एज़ अ लिसनर्स, आइए वहीं से कंटिन्यू करते हैं अपनी इस रेसिपी को. इंग्रेडिएंट्स तो मैंने आप सभी से शेयर कर दिए थे और आई थिंक सो आप सभी ने अब तक नोट कर लिए होंगे. अब जरा आगे बढ़ते हैं प्रोसीजर की जानिब. सो सबसे पहले करना क्या है, करना ये है कि आपने ले लेना है एक बड़ा सा बर्तन या फिर मर्तबान. आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आप कितनी क्वांटिटी बना रही हैं, उस हिसाब से आपने बर्तन का इस्तेमाल करना है. सो सबसे पहले आपने कुकिंग ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है. गर्म करने के फौरन बाद साबित गर्म मसाला इसके अंदर शामिल कर देना है. अच्छा, आप जो जो साबित गर्म मसाला मैंने आपको इंग्रेडिएंट्स में लिखवाया था वो सब मैं इसमें ऐड कर दूंगी, ठीक है. सो जैसे ही 2 से 3 मिनट में आपका गर्म मसाला खुशबू छोड़ने लगे, सो समझ जाएं कि अब वक्त आ चुका है कि अब आपने रेसिपी में ऐड करने हैं प्याज. अब प्याज को आपने तब तक पकाना है कि जब तक आपका प्याज बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाए. याद रखिएगा कि जब भी आप कभी पुलाव बना रहे हों, सो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि कभी भी ज़्यादा नहीं पकाना. इससे क्या होता है कि जो ओवरऑल लुक है वो डैमेज हो जाती है, चावलों का रंग गाढ़ा हो जाता है और वो दिखने में बिल्कुल भी प्रेजेंटेबल नहीं लगते. सो अगर हल्का गोल्डन ब्राउन प्याज होगा तभी रेसिपी अच्छी बनेगी. सो जैसे ही आपका प्याज हो जाए गोल्डन ब्राउन, आपने इसमें ऐड कर देना है जिंजर गार्लिक पेस्ट और साथ ही आपने शामिल कर देना है कीमा. अब इसे तब तक आपने भूनना है कि जब तक आपके कीमे का रंग बदल जाए. जैसे ही आपको लगे कि आपकी जो रेसिपी है यानी कि आपका कीमा है इसका रंग बदल चुका है, सो अब आप इसमें शामिल कर देंगे ढेर सारे टमाटर जो आपने कट करके रखे थे, योगर्ट, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और साथ ही साथ नमक. अच्छा, नमक को आप अपने टेस्ट बड के अकॉर्डिंग ऐड कर दीजिएगा. अच्छा, मैं यहाँ क्या करती हूँ कि सबसे पहले मैं 2 चम्मच नमक ऐड करती हूँ और फिर मैं टेस्ट करती हूँ. अगर मुझे ऐसा लगे बाद में दमा लगाने से पहले कि नमक थोड़ा कम लग रहा है तो मैं मज़ीद ऐड कर देती हूँ, लेकिन कोशिश यही करती हूँ कि पहले थोड़ा कम रखूँ, क्योंकि अगर अचानक से बहुत ज़्यादा नमक ऐड कर दिया जाए तो उसे निकालना मुश्किल हो जाता है और फिर चांसेस हैं कि रेसिपी स्पॉइल हो सकती है. सो आप भी इसी तरह पहले 2 चम्मच नमक ऐड कर दें और फिर फुल रेसिपी को कंप्लीट होने दें और आखिर में आप चेक करें कि क्या आपका नमक कम है या ज़्यादा. अच्छा, आप मसाले को अच्छी तरह से भून लें जब तक कि आपका ऑयल बिल्कुल अलग ना हो जाए. जैसे ही ऑयल अलग हो जाए इसमें 2-3 ग्लास पानी ऐड कर दें और कीमे को गलने के लिए छोड़ दें. जब आपको लगे 10 से 15 मिनट के बाद आपका कीमा बिल्कुल पक चुका है तो भिगोए हुए चावल को इसी के अंदर शामिल कर दें और हरी मिर्चें और पुदीना भी काट के डाल दें. जब पानी बिल्कुल खुश्क होने लगे और मज़ीद आप इसमें 4 से 5 कप पानी ऐड कर दें, ठीक है. जब पानी खुश्क होने लगे यानी कि बिल्कुल हल्का हल्का सा रह जाए, सो आंच को करते बिल्कुल स्लो और 15 मिनट के लिए इसे दम पर लगा दें. अच्छा, ये वो प्रोसेस है, ये वो टाइम पीरियड है जहाँ आपने चेक करना है कि आया आपका नमक बैलेंस है या नहीं. अच्छा, तो अगर आपको लगे कि आपका नमक बैलेंस नहीं है, सो इस टाइम पे इस मोमेंट में आपने मज़ीद थोड़ा सा नमक ऐड कर देना है और लगा देना है दम पे. सो ये लिसनर्स, मज़ेदार सी आपकी रेसिपी हो गई कंप्लीट और ये वो पुलाव है जो कि बहुत ही ज़्यादा गज़ाइत से भरपूर है. कहा जाता है कि कीमे के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सो लाजमी इसको बनाइएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से कि बड़ों को तो इसकी ज़रूरत है ही है लेकिन बच्चों के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा हेल्दी मील है. सो द लिसनर्स, लास्ट में ट्राई करिएगा इस रेसिपी को और आज ही मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी. और ऐसी मज़ीद मज़े की रेसिपी सीखने के लिए, जानने के लिए आप मुझे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैसेज करके बता सकते हैं कि अच्छा आपको फ़लाँ रेसिपी की सीखनी है या आपको फ़लाँ डिश की रेसिपी चाहिए, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी फेवरेट रेसिपी को लाजमी शो में शामिल करूँ.

जी तो लिसनर्स, हमने सुना है कि खूबसूरत सा प्यारा सा ट्रैक जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है. मैंने सोचा कि क्यों ना दो हमने अपने लिसनर्स की पसंद पर लगाए हैं गाने, तो क्यों ना एक गाना अपनी पसंद पर लगाया जाए. सो जी लिसनर्स, इसी के साथ ही शो में वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का. चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब. आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के उस पार. सो स्टे ट्यून विद अस और सुनते रहिए रेडियो फजा 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फ्रेड डंकन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटनिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715 2।
8: तो अब मैं सोच रही हूँ कि कोई ऐसा गाना शो में शामिल किया जाए जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद हो। सो जी, अपनी फरमाइश पर यानी कि अपने दिल की सुनते हुए प्ले करती हूँ ये खूबसूरत सा गाना। होप सो आपको भी अच्छा लगेगा। आइए मिलकर सुनते हैं ये ट्रैक।

अगर हमने सुना है कि खूबसूरत सा प्यारा सा ट्रैक जो कि मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद है. मैंने सोचा कि क्यों ना दो हमने अपने लिसनर्स की पसंद पर लगाए हैं गाने, तो क्यों ना एक गाना अपनी पसंद पर लगाया जाए. सो लिसनर्स, इसी के साथ ही शो में वक्त हुआ है एक अदद कमर्शियल ब्रेक का. चलते हैं, आगे बढ़ते हैं इस कमर्शियल ब्रेक की जानिब. आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के उस पार. सो स्टे ट्यून्ड विद अस और सुनते रहिए रेडियो फजा 97.1 FM.

मीठा सभी को पसंद होता है एंड आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा होगा इस दुनिया में जिसको मीठा ना पसंद हो. पर्सनली मुझे मीठा बहुत पसंद है और जब बात की जाए चॉकलेटी रेसिपीज की तो सुनते ही एकदम से मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है. सो आज की हमारी रेसिपी भी है कुछ इसी तरह की कि जब आप सुनेंगे तो आपके भी मुंह में जरूर पानी आएगा. सो सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स आप सभी से शेयर करती हूँ. इस रेसिपी को बनाने के लिए आपको चाहिए ब्रेड स्लाइसेस 6 से 8 अदर, बटर हस्बे जरूरत इतना बटर आप यूज कर लें कि जितना आप ब्रेड पर इजीली स्प्रेड कर लें. इस रेसिपी में शामिल होगा दूध 2 कप, हैवी क्रीम 1.5 कप यानी 1/4 कप एंड 1/2 कप. साथ ही साथ शामिल होंगे अंडे 3 अदद और लास्टली बट नॉट द लीस्ट शुगर. शुगर हम यूज करेंगे 1/4 कप एंड 1/2 कप. अच्छा, इस रेसिपी में टेस्ट को एनहेंस करने के लिए और जो अक्सर औकात हम अंडे वगैरह शामिल करते हैं तो होता है ना कि वो एक हल्की सी स्मेल आ रही होती है, उसको गायब करने के लिए हम यूज करेंगे वनीला एसेंस 1 चाय का चम्मच. किशमिश और बादाम मुट्ठी भर और दालचीनी पाउडर 1 चुटकी. ये तो थे वो सभी इंग्रेडिएंट जो कि मैंने आप सभी से शेयर कर दिए. अब जरा आगे बढ़ते हैं इसके फुल प्रोसीजर की जानिब. सो सबसे पहले हम ब्रेड स्लाइसेस पर अच्छी तरह से ब्रेड स्लाइसेस को ले लेंगे. ठीक है, ब्रेड स्लाइसेस के जो एड्स होते हैं उनको कट कर लेंगे. ठीक है, कट करने के बाद हम उसके ऊपर अच्छे से बटर को स्प्रेड कर देंगे और सब ब्रेड्स को ट्राइंगल शेप में काट लेंगे. अब हम क्या करेंगे, एक बेकिंग डिश को ग्रीस करेंगे और ये ब्रेड स्लाइसेस थोड़े ओवरलैप करके इसके ऊपर सजा देंगे. ऊपर से छिड़क देंगे किशमिश और बादाम. अब साथ ही हम एक और बाउल लेंगे, उसमें हम दूध ऐड करेंगे, साथ ही साथ क्रीम, एग, चीनी और वनीला एसेंस. इन सभी को अच्छी तरह से विस्क कर लेंगे. अब हम इस लिक्विड को ब्रेड के ऊपर डाल देंगे ताकि जो ब्रेड है वो इसके अंदर सोक हो जाए. ऊपर से हल्का सा दालचीनी पाउडर छिड़क देंगे. अब इस डिश को प्री हीटेड ओवन में 180 डिग्री सेल्सियस पर हम 30 टू 35 मिनट्स के लिए बेक करेंगे. जब तक ऊपर से कस्टर्ड सेट और गोल्डन ब्राउन ना हो जाए. सो ये फाइनली हमारी गर्मा गर्म सी बेक की हुई कॉन्टिनेंटल पुडिंग हो जाएगी तैयार. तो जनाब, चटपटे कीमा पुलाव और मजेदार से चटपटे से खाने के बाद जरा अब हसीन ब्रेड और बटर पुडिंग की जानिब हम बढ़े. ये थी हमारी आज की द टीवा डायलॉग की स्पेशल मेन्यू की स्पेशल रेसिपीज. आई होप लिसनर्स आप सभी को ये रेसिपीज बहुत अच्छी लगी होंगी. लाजमी ट्राई करिएगा, बल्कि मैं तो यही कहती हूँ कि आज ही आप इनको ट्राई करें, क्योंकि हम डेली बेसिस के वही सिंपल बोरिंग खाने खा के बोर हो जाते हैं और हमारी जितनी भी डिवाइस हमें सुन रही हैं वो भी ये शिकायत करती हैं कि डेली बेसिस पे क्या खाने में बनाया जाए और क्या किस तरह से न्यू इनोवेशन लेकर आया जाए. सो जी, ये दोनों ही रेसिपीज आपकी इस इनोवेशन प्रोसेस को कर देंगी मजीद अपग्रेड, क्योंकि ये काफी ज्यादा यूनिक है और काफी कम खाई जाती है. सो जी, लाजमी ट्राई करिएगा. और 01157100971 है आपका और मेरा रابطے का नंबर, यानी कि हमारा स्टूडियो का व्हाट्सएप नंबर. इस नंबर के थ्रू मुझसे लाजमी फीडबैक शेयर करिएगा, मुझे आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा. और इसी के साथ हमारे शो का वक्त भी हुआ अपने इख्तिताम के करीब. सो डियर लिसनर्स, शो का वक्त इख्तिताम के करीब पहुंचा. शो अभी इख्तिताम पजीर हो रहा है, लेकिन आपका दिन, आपकी सुबह अभी बाकी है. सो मेरे सभी सुनने वाले जितने भी लिसनर्स हैं, जेंटलमैन लिसनर्स एंड लवली डिवास, आप सभी से यही कहूंगी कि आज का जो हमारा कोट है इसको प्लीज अपने माइंड में रखिएगा. और हमारा आज का कोट क्या कहता है, वो ये कहता है कि दूसरों के लिए खुशी तलाश करें, लेकिन इस प्रोसेस पे खुद को मत भूलें, अपने लिए भी वही खुशियां तलाश करें, क्योंकि आपको भी उतनी ही खुशी की जरूरत है जितने की बाकियों को. सो दिल इस खूबसूरत सी बात के साथ शो को करते हैं इख्तिताम पजीर. आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल एक नए दिन के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नए जोश के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए और मुझे आरजे ज़ैनब फातिमा को अलविदा करिए. जाते जाते ये खूबसूरत सा प्यारा सा ट्रैक सुनते जाइए.

आपकी होस्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम नमस्ते सत श्री अकाल फजा 97.1 एफएम के लाइव शूट से जी मैं हूँ आपकी आरजे दीवरन ओनली आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सलूराज खुश आमदीद करते हैं वेलकम करती हूँ तमाम सुनते हुए समातों को रेडियो फजा 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज आवाज आप सुन रहे हैं सलूराज की सुबह बताइएगा क्या हाल चाल है कैसा गुजर रहा है दिन मेरे ख्याल में मेरी आपसे काफ़ी दिनों बाद मुलाकात होने को है और इस मुलाकात के वक्त मतलब वक्त भी बहुत थोड़ा सा होता है मतलब मुझे जब आपके साथ गपशप लगाने का मज़ा आता है तो टाइम ख़त्म हो जाता है वो कहते हैं ना कि जब किसी चीज़ को खाना शुरू करें ना और जब खाने का मज़ा आने लगता है तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है इसी तरह वक्त भी ख़त्म हो जाता है क्योंकि ये वो गाड़ी है जो पेट्रोल से नहीं बल्कि वक्त से चलती है और मेरा आपका टाइम जो है वो साथ जो रहता है वो है ठीक ठीक 12 बजे से 2 बजे तक और बताइएगा कि वीकेंड की भी बात मेरी आपसे रहती है कि वीकेंड आपका कैसा गुजरा था क्योंकि मेरे ख्याल में मेरी 2-3 दिन से आपसे कोई मुलाकात वाला सीन नहीं बन रहा लेकिन खैर कोई बात नहीं गपशप आपके साथ जारी रहेगी बताइएगा कामकाज की तरफ निकला है सो कैसा गुजर रहा है दिन और उसी के साथ साथ घर बैठी है भतीजे मुझे सुन रही है बताइएगा क्या मुझे क्या करते वक्त सुननी है मे भी शायद आपको मेरे से पहले वाली जो ट्रांसमिशन थी उसमें कुकिंग के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन मिल गई हो लेकिन फिर भी जो है अगर आपका दिन अभी शुरू हुआ है या फिर आपने अभी उठ के सोचा है कि खाने में क्या बनाया जाए तो कोई रेसिपी पूछना चाहे तो वो भी पूछ सकते हैं मुझसे नंबर बड़ा ही प्यारा है 01157100971 इस खूबसूरत से नंबर को कीजिएगा सेफ और सेफ कर लेने के बाद मुझे व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज कीजिएगा और बताइएगा कि आप हमें कहाँ से क्या करते वक्त सुन रहे हैं इसके अलावा मुझे गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं radiofaza.co.uk आने वाली पहली वेबसाइट को ओपन कर लीजिएगा वहाँ पर आपको हमारा या फिर किसी भी आरजे का प्रोग्राम सुनना हो किसी भी आरजे प्रोग्राम की इन्फॉर्मेशन लेनी हो कि कौन सा आरजे किस तरह का प्रोग्राम किस टाइम पे करता है सो वो आपको वहाँ से मिल जाएगी प्ले स्टोर से एप्लीकेशन प्ले स्टोर से या फिर एप्पल स्टोर से एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं रेडियो 97.1 एफएम के नाम से प्रोग्राम में आपको प्रोवाइड करेंगे इन्फॉर्मेशन मेनी और आपकी होगी कम्युनिकेशन और होगी मिल इंटरटेनमेंट बट उसी के साथ साथ प्रोग्राम में ट्रैक भी शामिल करवाए जाएंगे कोई ट्रैक प्ले करवाना चाहें किसी प्यारी के लिए या फिर अपने लिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ज़िंदगी में अपने आप को सबसे पहले रखिए अपने आप को अहमियत दें अपने आप को अहमियत देंगे तभी जो है वो लोग भी आपकी कदर करेंगे लेकिन हाँ कोई ट्रैक प्ले करवाना चाहें अपने लिए मुझे लाजमी बताइएगा या फिर कोई ट्रैक आप वो है ना एक खूबसूरत सी आरजे सलूराज उनके लिए कोई ट्रैक प्ले करवाना चाहें उनको कोई ट्रैक डेडिकेट

करना चाहें सोला वो भी कर सकते हैं। प्रोग्राम में शामिल होने का तरीका आपको मैं नोट करवा चुकी हूँ, और जो लोग ऑफिस की तरफ निकल आए हैं बताइएगा कि दिन कैसा गुजरा है। अगर ऑफिस में आते साथ पड़ चुकी है वो खड़ूस से बॉस की डांट, तो घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। और आपके मूड को फ्रेश करने के लिए हम प्रोग्राम लेकर आते हैं आपके लिए लंच बॉक्स टाउन, जिसको ओपन करके ना सिर्फ बीच में खाना मिलता है बल्कि बहुत ऐसी बातें छुपी होती हैं, बहुत ऐसे एहसास, बहुत ऐसे जज्बात जो आपने मुझ तक पहुंचाने होते हैं। क्योंकि मैं कहती हूँ ना कि कुछ ऐसी बातें जो आपने मुझ तक पहुंचानी है और कुछ ऐसी बातें जो सलराज ने आप तक पहुंचानी है। लेकिन आप मुझे सिर्फ मैसेज नहीं कर सकते, आप मेरे साथ कॉल के थ्रू भी प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। जिन लोगों ने आज रवि फजल 97.1 एफएम को ट्यून किया है, बेशुक्रिया। आप तमाम समातों का प्रोग्राम में शामिल होने का तरीका बड़ा ही आसान सा है, 1157100971। हमेशा की तरह प्रोग्राम में एक छोटा सा टॉपिक शामिल किया जाता है, उस टॉपिक के हवाले से डिस्कस स्टार्ट की जाती है। और अक्सर जो है टॉपिक में अपनी मर्जी का शामिल करवा देती हूँ, लेकिन कभी कभी ये कभी कभार ये भी हो जाता है कि मैं सोचती हूँ कि यार क्यों ना टॉपिक जो है वो लिसनर्स की मर्जी का हुआ जाए, यानी कि आपके दिमाग में कोई टॉपिक चलता हो, आपके दिमाग में कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन हो जो आपने मुझ तक पहुँचानी है, या फिर कोई आज की ऐसी गहरी बात जो आप सोचते हो कि यार इस पर आज डिस्कस कर ही लेते हैं, जिस पर आप सदियों से इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब होता है ना, इंसान के दिमाग में, इंसान के माइंड में जब कोई चीज़ आती है और वो उस चीज़ पे सोचने की कोशिश बढ़कर करता है, पर वो सोच नहीं पाता उस चीज़ के बारे में। सो अकेले बैठ के तो वाकई सोचा भी नहीं जाता, तो आप उस चीज़ को मुझ तक पहुँचाएं। मुझे उस तरह की, उस मामले को लेकर जिस तरह की भी इन्फॉर्मेशन मेरे अंडर में हुई, मतलब मुझे पता हुई, तो मैं आप तक ज़रूर पहुँचा दूँगी। क्योंकि आई नो कि ज़िंदगी के मामलों में जो है ना, इंसान इतना उलझ के रह जाता है कि उसको समझ नहीं आती कि किस चीज़ को किस हद तक सोचा जाए, और हम जो है ना उन चीज़ों को सोचते भी नहीं है क्योंकि हम ज़िंदगी के टेंशनों में पड़े रहते हैं। हम समझते हैं कि यार जो लोग परदेश में होते हैं ना, मतलब लोगों का कहना है, मतलब कुछ लोग ये समझते हैं कि जो लोग परदेश में होते हैं वो बड़े खुशहाल और खुशबाश ठीक ठाक होते हैं, असल में वो बहुत परेशान होते हैं। क्योंकि एक तो वो घर वालों से दूर होते हैं, दूसरा फिर कमाने की टेंशन, खाने की टेंशन, पीछे घर वालों की टेंशन। ये बात सिर्फ हम ही को पता हो सकती है, क्या कहते हैं आप सब? क्योंकि भाई हम नोटी गम में मौजूद हैं, हमें पता है कि हम यहाँ पे कैसे सरवाइव कर रहे हैं, हम यहाँ पे कैसे रह रहे हैं। सब अपने प्यारों के लिए जो है वो कहीं ना कहीं सरवाइव करते हैं, और करना भी चाहिए, जो है ज़िंदगी इन्हीं चीज़ों से चलती है। अरे भाई मेरा फ़ोन क्यों उठा के लेके जा रहे हो? मैंने मुश्किल से तो एक फ़ोन दिया था, वो भी आपने अपने हथे डाल दिया। नहीं नहीं, ये मैंने आपको नहीं बोला, ये मैंने किसी और को बोला है। सब आप बोलेंगे कि सलराज भी कहाँ की बात कहाँ पे उठा के ले आती हैं, पर कोई बात नहीं, प्रोग्राम में जो है इन्फॉर्मेशन मैं आप तक पहुँचाऊँगी। बट प्रोग्राम में जो है वो आगाज़ करेंगे ट्रैक का, यानी कि प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे एक खूबसूरत से ट्रैक के साथ, और वो ट्रैक जो है वो कुछ इस तरह से होगा, यानी कि सैड ट्रैक शामिल नहीं करेंगे, लेकिन अगर करना पड़ गया तो हमें करना पड़ेगा। अगर आप कहें कि हाँ, तो मैं कहूँगी कि प्रोग्राम में शामिल होकर ऐसे ट्रैक शामिल करवाइएगा जो पहले कभी भी हमारे प्रोग्राम में प्ले ना हुए। लेकिन आप यही सोचेंगे कि यार हमेशा सलराज यही क्यों कहती हैं, सैड ट्रैक भी तो शामिल करने चाहिए। सो सैड ट्रैक भी शामिल कर लेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है, निराश तो मैं आपको कर नहीं सकती। सो ट्रैक जो है वो आपकी मर्जी के ज़रूर शामिल होंगे, क्यों नहीं होंगे, बस उसके लिए आपको करना ही पड़ेगा, मुझे मैसेज करना पड़ेगा, मुझ तक मैसेज पहुंचाना पड़ेगा। जैसे ही आपका मैसेज मेरे काका कंप्यूटर की स्क्रीन पर जगमगाएगा, उसमें जल्दी से उस ट्रैक को जो है अपने प्रोग्राम में प्ले कर दूंगी। अभी मुझे ना उस तरह से मतलब समझ नहीं आ रही कि मुझे ट्रैक प्ले करना कौन सा चाहिए, बट अचानक से एक ट्रैक मेरी आंखों के सामने आया और मेरा दिल किया कि इसको प्रोग्राम में शामिल कर दिया जाए, और मैं करूँगी भी ज़रूर, क्योंकि कभी कभार अपने दिल की भी सुन लेनी चाहिए। मैं आगे भी यही कह रही थी कि भाई अपने आप को हमेशा पहले नंबर पर रखें। सवाल आइए सुनते हैं इस ट्रैक को, इस ट्रैक के बारे में आपसे मुलाकात। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून फॉर 97.1 FM एंड डैप। मिलते हैं इस ट्रैक के उस पार।

जी हाँ, तो वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से खुश आमदीद करते हैं तमाम सुनते भी समातों को रेडियो पर 97.1 एफएम के लाइव स्टूडियो से। प्रोग्राम आप सुन रहे हैं लंच बॉक्स लाउंज आवाज़ फिटनेस और आज की सहूलसी के साथ साथ जो है वो प्रोग्राम में प्रोग्राम का आगाज किया था एक खूबसूरत से ट्रैक के साथ। ट्रैक इस बार आपसे मुलाकात बस उसी के साथ साथ एक बड़ा ही मज़ा सा टॉपिक आप सबके लिए लेकर आई हूँ और उम्मीद करूँगी कि आपको पसंद भी आएगा। कुछ इस तरह से है कि तलवार का ज़ख्म भर जाता है मगर अल्फाज का ज़ख्म अक्सर जो है ना दिल में बाकी रह जाता है। अब ये मैसेज देखा जाए तो बहुत छोटा सा है, अल्फाज बहुत छोटा सा है, लेकिन अगर इसको गहराई में जाके देखा जाए तो दिस इज़ वेरी डीप। और जो है इसको अगर हम डीपली जाके बात करें ना तो बहुत सी ऐसी बातें निकलेंगी जो हमें मालूम भी नहीं होंगी। हम रोज़ाना ना जाने कितने अल्फाज बोलते हैं लेकिन शायद ये नहीं सोचते कि हमारे एक जुमले से किसी का हौसला बढ़ भी सकता है और किसी का दिल भी टूट सकता है।

अच्छी बात जो है वो अच्छी बात है कि हौसला अफजाई करें, मोहब्बत से जो है लोगों से सबसे बात करें, एहतराम से अपने लफ्ज़ों को भर लें, इंसान के अंदर नई उम्मीद पैदा कर सकते हैं आपके ये चंद अल्फाज, आपकी ये एहतराम से भरे अल्फाज, जिनके जबकि जो तल्ख लहजा होता है ना, उन सख्त अल्फाज कभी कभी जो है वो नुकसान पहुंचा देते हैं और हमें अंदाज़ा भी नहीं होता कि हमने अपना और अगले बंदे का कितना नुकसान कर दिया। अगले का तो है नहीं होगा लेकिन आपका नुकसान बहुत हो जाता है और जिसकी तलाफी भी जो है ना, माफ़ी भी मुश्किल हो जाती है। इसीलिए बोलने से पहले एक लम्हा जो है रुक कर ज़रूर सोचें। मैं तो यही बोलूँगी और मेरी भी यही आदत है कि अगर मुझसे कोई किसी भी तरह का क्वेश्चन करता है ना, किसी भी तरह का सवाल करता है, तो मैं पहले कुछ देर ना सही मतलब तकरीबन 10 सेकंड तक उस बात को सोचती हूँ, उस बात को सोच के फिर उस बात के हवाले से डिस्कस स्टार्ट करती हूँ। बेशक मुझे उस चीज़ का आइडिया भी ना हो, पर मैं उसको सोचती हूँ, सोच के फिर बात को आगे कंटिन्यू करती हूँ। हो सकता है कि क्या मेरी बात किसी को तकलीफ तो नहीं देगी, बल्कि हमें यह लगता है कि हो सकता है कि हमारी बात किसी को तकलीफ नहीं देगी, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमें खुद नहीं पता चलता कि इंसान जो है ना, मतलब हमसे ऐसी गलतियां हो जाती हैं जिनके बारे में हमें भी आइडिया नहीं होता कि यार हमें ये चीज़ करनी भी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी। और जब हमें ख्याल आए भी या हमें वो मदावा हो भी, तब तक बहुत देर हो जाती है। फिर हम बात कर जाने के बाद, टाइम गुजर जाने के बाद ये बात सोचते हैं कि क्या मैं अपनी बात नरम अंदाज में भी कर सकता था या कर सकती थी, क्या मेरे अल्फाज किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हैं। ये हम सोचते हैं और ऐसा होता है। मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में इस बात को कहती हूँ कि आप जो है ना, अपने लिए ना सही, दूसरों के लिए मुस्कुरा लें। देखें कि जिस इंसान को आपकी छोटी सी मुस्कुराहट से थोड़ी सी भी खुशी मिल रही है ना, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई गर्ज नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। आप उसके साथ अच्छे से बर्ताव करें, आप उसके साथ अच्छे से बोलें, हंसें, उठें, बैठें। आपकी छोटी सी हंसी जो है ना, वो अगले बंदे को पॉजिटिव बना सकती है। बल्कि वो कहते हैं ना कि पॉजिटिव हमें खुद ही सोचना पड़ता है, नेगेटिव हम सोचने लग जाते हैं। मैं अक्सर कहती हूँ कि हम लोग जब अपने मतलब किसी भी तरह की बात करते हैं ना, तो उसमें ये बात ले आते हैं कि यार ऐसा बोला तो बोला, यानी कि हम उसको पॉजिटिव में भी सोच सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम हर चीज़ को नेगेटिव में ही सोचें। सो याद रखें कि अल्फाज हमारी शख्सियत का आईना होते हैं। लोग अक्सर हमारे चेहरे नहीं देखते, नहीं पढ़ते, बल्कि हमारे लहजे और अंदाज़े गुफ्तगू को जो है ना वो याद रखते हैं। सो कोशिश ये करें कि अपने अंदाज़े गुफ्तगू को अच्छा रखें, दूसरों के साथ अच्छे से बात करें। थोड़ी देर का टाइम जो है ना, अगर आप किसी के साथ थोड़ी देर के लिए उठ बैठ रहे हैं किसी भी महफिल में, किसी भी गुफ्तगू में, तो अच्छे से बात करें, क्योंकि आई डोंट नो कि आज ज़िंदगी जो है वो कल को फिर से मौका देगी या नहीं देगी। क्योंकि वो कहते हैं ना कि जब हम किसी से मिल कर आते हैं तो हम कहते हैं कि दोबारा ज़िंदगी रही तो कोशिश रही तो इंशाल्लाह ज़रूर मुलाकात होगी, लेकिन हम उस चीज़ को ये नहीं नोट करते कि एक इंसान जब आपको चीज़ बोल रहा है तो इस वजह से बोल रहा है कि आपका अहलाक अच्छा है। आप अपना अहलाक अच्छा रखेंगे, अपनी ज़ुबान को अच्छा साफ पाक साफ रखेंगे, पाक साफ रखेंगे, तभी जो है ना वो अगला इंसान जो है आपकी कदर भी करेगा और दोबारा जो है आपसे मिलने की चाहत भी रखेगा। अल्फाज सिर्फ आईना नहीं, अल्फाज सिर्फ आवाज़ नहीं होते, ये जज्बात का वो आईना होता है और यही अल्फाज जो है रिश्ते को बनाते हैं, मजबूत रिश्ता बिगाड़ भी देते हैं यही अल्फाज। सो भाई हमें जो भी चीज़ करनी चाहिए, जिस तरह भी बोलना चाहिए, सोच समझ कर बोलना चाहिए। एक नरम लहजा किसी के दिल को सुकून दे सकता है, जबकि एक सख्त जुमला जो है ना बरसों की मोहब्बत को कमज़ोर भी कर सकता है। वो कहते हैं कि दिल में जगह बनाने के लिए जो है ना वो बहुत टाइम लगता है, लेकिन दिल से उतरने के लिए जो है ना वो मैं भी शायद 2-3 सेकेंड ही होंगे। लेकिन अगर हम गुस्से में कोई तल्ख बात कह दें तो माफ़ी मांग लेनी चाहिए, और माफ़ी मांग लेने के बावजूद उसका असर दिल में रह सकता है। कैसे रह सकता है कि पता नहीं उस इंसान ने माफ़ किया भी होगा, पता नहीं कि यार उससे मतलब वही बात आ गई, जब एक बात दिल में आ जाती है ना तो फिर वो आ ही जाती है, फिर हम कुछ भी कर लें ना कुछ भी कर लें तो एक वो दरार सी जो है ना दिल में पड़ जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि दीवार बनी है और जब वो दीवार पूरी तरह से तैयार हो गई है तो उसमें हल्की सी जो है ना वो दरार आ जाए, के हल्की सी लाइन आ जाए, तो वो भरने के लिए जो है ना वो साल लग जाते हैं।
आप उसको भरेंगे फिर से वो उतर जाएगा, फिर आप भरेंगे फिर से वो उतर जाएगा, फिर भरेंगे फिर से उतर जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि एक बार चीज़ में दरार आ जाए ना तो फिर वो भरती जो है ना वो नहीं, वो मुश्किल हो जाती है भरना।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे।

भाइ म त यहीँ खेता आसिएर हाम्रो पाँच मिनट लाग्छ पाँच दस मिनट।

আপনি ঠিক কথা, একটু দিন লেট হবে না?

Yeah, it is.

0: ये का
1: चलो अजय भाई।

हरिंगवा के बहुत लोग डिजाइन डिजाइन का तैयारी करते हैं।

कोई से तुम खुद देखे है खफा कोई वफा भी करके है बुरा कोई ऐसा भी करता है भला कोई छोड़ो ना करता मैं ख्याली बातें लाता ना रिश्तों में पुरानी बातें बना इश्क की मिसाल कोई और बना इश्क पे सवाल कोई।

You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention!
3: Property owners and letting agents, are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
8: Music never sounded better.
9: Fazan 97.1 FM.
10: I love it.
11: You are listening 97.1 FM.
12: Are you

0: It's commercial time.
1: Rosyd Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyd Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyd Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyd-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyd Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793 2।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.

Once again, welcome back. आ चुके लौट के वापस इस उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरे साथ साथ हैं और मैं भी आपके साथ साथ हूं। बंदन अजीज उस्मान खान, आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM नॉटिंघम के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम ड्राइव ज़ोन, और आपके साथ जो है मजीद अभी डेढ़ घंटे का पड़ा है, तो इस साथ को मजीद खूबसूरत बनाने के लिए आप लोग मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं 0115710971 पर मैसेज करके। इसके अलावा आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, कॉल करने के लिए वही नंबर है, उसको बस आपने सेव करना है और फिर व्हाट्सएप पर जाकर मुझे कॉल कर लेनी है। द नंबर इज 0115710971। बस जनाब, ये वो तमाम तरह रास्ते हैं जिनके रास्ते आपने मुझ तक पहुंचना है। खैर, ये तो मैंने सिर्फ आपको अभी व्हाट्सएप का बताया है। आप अगर मुझे सुन रहे हैं लाइव स्ट्रीमिंग के थ्रू, तो उसके लिए जिन लोगों को नहीं पता उनको बता देते हैं कि आपने लाइव स्ट्रीमिंग के लिए गूगल पर जाना है और गूगल पर जाकर आपने सर्च करना है radiofaza.co.uk। आने वाली पहली वेबसाइट पर क्लिक कीजिएगा और मुझे लाइव सुन लीजिएगा। इसके अलावा आप हमारी प्ले स्टोर से एप्लीकेशन भी इंस्टॉल कर सकते हैं रेडियो फजा 97.1 FM के नाम से। एक बड़ी खूबसूरत सी प्यारी सी वेबसाइट एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी। कभी कभार जब आप आउट ऑफ माइंड होते हैं तो बहुत से अल्फाज जो हैं वो आपसे इधर उधर हो जाते हैं, तो इधर उधर होने वाले अल्फाज को हम थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ज़माने में और भी गम है मोहब्बत के सिवा, तो इसलिए हमारे पास और भी कई मामलात हैं जिनको लेकर साथ साथ चलना है। लेकिन इन तमाम तर मामलात के बीच बीच आपको भी साथ साथ रखना है। इस वक्त मेरे ड्राइव करते हुए जितने भी दोस्त हैं मुझे सुन रहे हैं, उनको कहना चाहेंगे जनाब आपने बीच से बी केयरफुल, एहतियात से ड्राइव करनी है और सियानों की बात को लाजमी फॉलो करना है कि कभी ना पहुंचने से देर से पहुंचना बेहतर है। ये खूबसूरत सी आवाज़ आप सभी खूबसूरत सी समातों की नज़र करते हैं, इस आवाज़ के उस पर आपसे मुलाकात करेंगे। साथ रहिएगा, साथ होने का एहसास दिलाइएगा। ड्राइव कर रहे हैं तो आप फजा डैप पर भी मुझे ट्यून कर सकते हैं। प्रोग्राम ड्राइव जोन, मैं आपके साथ आपका मेजबान उस्मान खान।

जी हाँ जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक आ चुके हैं लुट के वहाँ भी, इस उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरे साथ साथ हैं और मैं भी आपके साथ साथ हूँ। मुझे कहते हैं उस्मान खान और आप सुन रहे हैं फजा 97.1 FM एंड टैब। वैसे कितनी अजीब सी बात है ना, कभी कभार इंसान के मुंह से रवानी में बातें कुछ ऐसी निकल जाती हैं जिन पर बाद में उसे सोचना पड़ता है कि उसने क्या कह दिया। लेकिन आपको पता है कि रेडियो की फील्ड में इस चीज़ की गुंजाइश नहीं होती। और कहते हैं कमान से निकला हुआ तीर और जबान से निकले अल्फाज एक बार निकल जाएं तो फिर वापस नहीं आते। लेकिन हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि एक आध रास्ता ज़रूर छोड़ें ताकि जब कभी कुछ गलती हो जाए और उसका पछतावा हो तो हम उस पर माजरत गना हो सकें। खैर जी, ये बातें भी साथ साथ कहते रहेंगे और साथ कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का पर्पज़ भी होना चाहिए। लेकिन इन दो चीज़ों से पहले एक चीज़ जो मैं भूल गया था उसको दोबारा से रिवाइंड किया है तो याद आया है कि हमारे एक लिसनर थे जिन्होंने हमें कॉल करके हमसे एक गाने की फरमाइश की थी। फिर मुझसे मेरे लिसनर्स को ये शिकायत रहती है कि मैं ये कह देता हूँ कि आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं आपके लिए इस गाने को शामिल करने की कोशिश करूँगा, फिर मैं भूल जाता हूँ। लेकिन इस दफ़ा मैं बिल्कुल नहीं भूलने वाला। मैं याद है मुझे आपने रईस मूवी से एक ट्रैक की फरमाइश की थी, तो लीजिए लैला में लैला, खूबसूरत सा ट्रैक, काशिफ आपकी नज़र। उम्मीद है कि आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। इस ट्रैक को उस पार करते हैं, आपसे फिर से मुलाकात, रहिएगा मेरे साथ। आई एम योर होस्ट उस्मान खान।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स, होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Bedford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

जी हाँ जनाब, वंस अगेन वेलकम बैक। आ चुके हैं लुट के वापस एक छोटी सी प्यारी सी चुनमुनी शुक्रिया की। उस पार मुझे कहते हैं उस्मान खान, एंड आप सुन रहे हैं फजा 97.1 एफएम एंड डैब के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम ड्राइव जोन। सियाने कहा करते हैं कि तुम पानी जैसे बनो जो अपना रास्ता खुद बना लेता है, पत्थर जैसे मत बनो जो दूसरों का रास्ता भी रोक लेते हैं। मसला ये है कि जनाब, हम पानी बने तो लोग हमारे साथ बहना शुरू कर देते हैं, सिर्फ अपना फ़ायदा ढूंढते हैं, और पत्थर बनते हैं तो ठोकरें मारने पर उतर आते हैं। आखिर किया जाए तो क्या किया जाए। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं ना कि इतने मीठे भी ना बनो कि कोई खा जाए, और इतने कड़वे भी मत बनो कि कोई थूक दे।

फर्क ये पड़ता है कि अच्छे वक्त से कुछ ना कुछ हासिल किया जाए और बुरे वक्त में उसी हासिल शुदा को इस्तेमाल किया जाए। हम लोग क्या करते हैं कि अच्छे वक्त में खाते पीते रहते हैं और फिर बुरे वक्त में पछताते रहते हैं, जबकि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आपको पता है ना कि परेशानी जो है वो हालात से नहीं ख्यालात से पैदा होती है। जहन को साफ रखें, पुरसकून रहें और कोशिश करें कि आपकी वजह से कभी किसी की दिलाजारी ना हो, कोई आपकी वजह से दुखी या परेशान ना हो जाए। बस इन चीज़ों का ख्याल रखें, बस चलते रहें जी, जो होगा सो होगा। हाँ, ये बड़े लोग कहते हैं कि वक्त पड़ने से पहले, कि जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। यकीन करें, जब वक्त आता है तो फिर देखने नहीं होता। इसलिए कोई ना कोई प्लान ज़िंदगी में लाजमी रखिएगा जिसको लेकर आपने आगे बढ़ना है। जैसे मेरा प्लान था कि ये वाला खूबसूरत सा गाना मैं आपको सुनाऊंगा, और मैं तो कम से कम अपने प्लान में कामयाब हुआ। उम्मीद है कि आप भी ज़रूर अपने किसी न किसी प्लान में कामयाब होंगे, आगे बढ़ेंगे। इस गाने के उस पार जब लौट कर आएंगे तो मज़ीद थोड़ी सी मोटिवेशनल बातें करेंगे। हालांकि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि कोई ना कोई एक अच्छी बात ऐसी ज़रूर कर दूँ जिससे मेरे प्रोग्राम का मकसद पूरा हो जाए, और सुनने वालों में से कोई एक भी उस पर अमल कर ले तो उसकी ज़िंदगी बेहतर है तो बेहतरीन हो जाए। मिलते हैं इस खूबसूरत सी आवाज़ के उस पार, रहिएगा मेरे साथ। आई एम योर होस्ट उस्मान खान।

एंड जेंटलमैन, दिस इज योर कैप्टन स्पीकिंग. आज की फ्लाइट में आप सबका स्वागत है. हमारा क्रू आपका बहुत ख्याल रखेगा, लेकिन आपसे एक निवेदन है कि अपनी चोली टाइटली बांध लें ताकि दिल बाहर ना गिर जाए.

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पिशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पिशावर अपने नौटिंगम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पिशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनवारी और चरसी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पिशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम्प टिक्का।
2: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पिशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंगम एंड 72ET
3: Peshawari Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स जो साग कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: Hit music, entertainment, poetry, news and health, all under one roof. Our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.

जी हाँ जी, वंस अगेन वेलकम बैक। आ चुके लौट के वापिस इस उम्मीद के साथ कि आप लोग मेरे साथ साथ हैं, मगर ये साथ हुआ इख्तिताम की जानिब रवा दवा, क्योंकि आपके मेजबान उस्मान खान को आपसे इजाजत चाहिए। जिंदगी और सांसों ने वफा की तो गिल, सेम टाइम सेम प्लेटफॉर्म पे आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक अपने मेजबान उस्मान खान को दीजिए इजाजत, खुश रहिए, आबाद रहिए और हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि वहां से प्यार ले लीजिएगा जहां पर प्यार बट रहे, और बाखुदा वहां पर प्यार दे दीजिएगा जहां पर प्यार की जरूरत है। जिंदगी और सांसों ने वफा की तो कल होगी मुलाकात, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, जहां भी रहिए बस अपने खर्चे पर रहिए, क्योंकि अपने खर्चे पर रहने से दो फायदे होते हैं, इज्जत भी बचती है और इज्जत नफ्स भी। इन दोनों के साथ दीजिए इजाजत, अगले प्रोग्राम तक के लिए आपका, मेरा और सबका अल्लाह निगेबान।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंटन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी राब्ता करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715।
8: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

0: It's commercial time.
1: Ohana, kai ke khushbu gosht ki zaika aur Peshawar ka mehman nawazi.
2: कहाँ खान भाई, पेशावर पहुँच गए क्या?
1: नहीं जान के टूटे, पेशावर अपने नौटिंघम में आ गया ना यारा। जी हाँ, तैयार हो जाए क्योंकि 27 जुलाई 2026 को होने जा रही है पेशावरी डेरा की शानदार ग्रैंड ओपनिंग,
3: जहाँ लजीज चनवारी और जर्सी कड़ाही की खुशबू आपको खींच लाएगी।
1: दमदार खुशबूदार लैम्प काबली पुलाव दिल जीत लेगा,
3: असली पेशावरी जायके वाले चपली कबाब
1: और अंगारों पे तैयार होने वाला लाजवाब अफगानी लैम टिक्का।
3: अब और न सुनाओ, भूख लग गई है।
1: तो फिर सुनना छोड़ो यारा, पहुँच जाओ जल्दी।
3: अपने दोस्तों को बुलाएं, फैमिली को साथ लाएं और पेशावर के असली जायकों का चस्का लें।
4: टू स्टे कॉन्टेक्ट 07440016816 एड्रेस 35 लेंटन बुलेवार्ड लेंटन नॉटिंघम NG72ET
3: Peshawri Dera.
5: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
1: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
1: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
1: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करे।
6: द बेस्ट सॉन्ग्स ऑन द रेडियो, दिस इज माय ओनली फेवरेट स्टेशन,
7: रेडियो बजार 97.1 FM।
8: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंटन रोड नॉटिंघम या अभी रापता करें 0759315069। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ हरियाणा सुपर मार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स हरियाणा के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770-21-07932।
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: ख्वाबों जैसी शादी का ख्वाब अब हकीकत में बदलने वाला है। आपकी खुशियों के हसीन लम्हे यादगार बनाने के लिए हयात वेडिंग डिकोर हाजिर है। जदीद तरीन थीम्स, शानदार सेटअप, संगीत, मेहंदी, वेडिंग रिसेप्शन, होम एंड वेन्यू, निकाह पार्टीशन, सेंटर पीसेस, वेलकम साइन, एंगेजमेंट, हाउस लाइटिंग, वॉक अवे, डांस फ्लोर और आपकी पसंद के मुताबिक सजावट, वो भी आपके बजट में। तो देर किस बात की, अभी रابطہ करें हयात वेडिंग डेकोर से और अपनी शादी को बनाएं एक शानदार याद। मजीद मालूमात के लिए कॉल करें 07715299।
8: यू आर लिसनिंग टू रेडियो फाजा ऑन 97.1 FM।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: रोज रोज सेम रूटीन से बोर हो गए हैं,
3: तो अब वक्त है अपना मूड चेंज करने का।
2: वेलकम टू मूड रेस्टोरेंट, जहां हर बाइट के साथ मिलता है परफेक्ट टेस्ट और परफेक्ट वाइब्स।
3: चाहे हो फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट, फैमिली डिनर या मी टाइम, मूड रेस्टोरेंट है हर ओकेजन के लिए परफेक्ट।
2: Delicious premium steak, juicy burgers, creamy pastas और fresh drinks, सब कुछ एक ही जगह।
3: क्योंकि जब खाना हो जबरदस्त तो मूड खुद ही बन जाता है।
2: तो आज ही विजिट करें मूड रेस्टोरेंट, moodnottingham.com, 948 Woodsboro Road, Nottingham, NG35QS।
3: हर दिन को बनाए स्पेशल मूड रेस्टोरेंट,
2: टेस्ट भी वाइब भी।
4: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
5: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
4: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
5: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
4: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
5: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
6: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
4: Park Foods, जो नाम है मायार का।
7: You are listening to 97.1

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: This is 97.1 Fazer FM.
8: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त लेने।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपर मार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.
11: Non-stop hits, non-stop energy. Radio Fuzza 97.1 FM.
12: You are staying. We are playing Fuzza 97.1.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ,
3: पंगड़े पाओ। आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे रहे।
3: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115-671-3677.